0: वक्त का वो डेनमार्क आया, अब तक उसने अपना मकान जो है वो बैंक में किसी सूरत में रहन नहीं रखा। भाई हम किस्तें पे कर रहे हैं, फ्लैटों की किस्तें पे कर रहे हैं, गाड़ियां लेते हैं वो किस्तों पे लेते हैं। डेनमार्क के अंदर मेरा ख्याल में 8 to 9% लोग ऐसे होंगे जिन जिनको अबाई मकान मिले हुए हैं या जिन्होंने अपने कैश लेके। यहाँ तो जो मिलियार्ड अगर 10, 12, 12, 20, 20, 40, 40 मिलियन करोड़ के जो मकान देते हैं वो भी बैंक से लोन लेते हैं। तो पाकिस्तान को गरीब बनाया है लोगों ने, हमारे सियासी लोगों ने। इसी तरीके से यहाँ के डेनमार्क के हालात को जो चेंज किया गया है और हम लोगों पे जो अब मुसीबत आई है ये टैक्सी ब्रांच में और ये जो खियोस्क ब्रांच के अंदर और दूसरी जगह, ये हमारे सियासतदानों की नाहेली की वजह से आया। अगर ये बताते कम्यूनों को, मैं बताते कि यहाँ पे कितने फॉरनर्स हैं, वो कौन कौन सी जॉब करते हैं, उसके ऊपर डिबेट कराते, तो ये इस तरीके के भूचाल कभी भी यहाँ पे ना आते। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम डेनमार्क में आए थे तो यहाँ पे 52,000 बंदा जो था, मेरे पास प्रूफ है, 1970 में 52,000 के करीब आदमी जो था वो आबेसलूस था डेनमार्क के अंदर। कि इन्होंने हमें क्यों बुलाया, इसकी एक रेजा रीजन है, क्योंकि बीबीए भी सुनती है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमें इन्होंने बुलाया, तो हम लोग आए, हमने यहाँ पे अपनी उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने मेहनत की दिन रात, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे इधर काम किया, फैक्ट्रियों में सोए और इस मुल्क को तरक्की में इसका हाथ बटाया। सबसे बड़ी हमारे से ये नालायकी हुई कि हम डिपेंड करना शुरू कर दिए अपने यंगस्टर्स पे, जिन्होंने स्कूल में बेहतरीन डैनिश जबान सीख ली लेकिन उनको कानून का नहीं पता था। हमने उनको पाकिस्तानी सियासत सिखला दी कि ये फलाना जन्म का है, ये फलाना गुजरात का है, ये फलाना पिंडी का है, इसकी मदद नहीं, ये करनी है वो करनी है। उससे पहले तो हम सब भाई भाई थे। मुझे 100% याद है अपना कि जब हम स्टेशन पे अपनी पोस्ट लेने जाते थे खत पढ़ने के लिए सैटरडे संडे, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस रहते थे, तो वहां लोग कहते थे यार ये खत पढ़ दो और इसके साथ एक लिख भी दो ताकि यहीं से, तो इतनी मोहब्बत थी। आज हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे से बात करने मिलेंगे वक्ती तौर पे बाय बाय, उसके बाद एक दूसरे से बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करना, उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये चीजें जो है ये हमने यहाँ, हमें सियासतदानों को चाहिए था जो सियासत करते हैं कि अवेयरनेस दे। मैं आज भी ये हल्फन ये बात कहता हूँ कि आज भी अगर हम 400-500 इतने हजार टैक्सी ड्राइवर हैं, अगर 400-500 टैक्सी ड्राइवर आज भी इकट्ठे हो जाएं और ये सिग्नेचर कर दे, तो आज भी जो है बगैर डेमोन्स्ट्रेशन किए, बगैर किसी चीज के बोलने वाले बच्चे हमसे कानून सीखे, यहाँ का जो आईन है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है, और ये जो है टैक्सी का कानून दोबारा चेंज करने पे मजबूर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट करेगी। क्यों कि सबसे पहले मैं शायद सुन रहा, मियां साहब भी सुन रहे हैं, आपको ये बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऊपर को बैन किया तो फिर किस तरीके से सियासतदान सुप्रीम कोर्ट को के लॉ को वायलेशन कर रहे हैं, ये चीजें हमने हाईलाइट करनी है। इन चीजों को सामने लेके आएंगे तो ये खुद बहुत जो है ये मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हम हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास भविष्य होनी चाहिए। जब तक आपके पास भविष्य नहीं आप बात नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि यंगस्टर्स आए हमसे बात करें, हम उनको भविष्य देते हैं, उनको इस बात पे कायल करते हैं कि ये देखें ये आईन है और ये लॉ फौसले है, और ये फौसले है आप लॉ फौसले को आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे पीछे 10 बंदे नहीं खड़े हो सकते तो मैं कैसे जाके अकेला जो है इस कानून के ऊपर लड़ाई करूं। ये तो चाहिए इन लोगों को जिनको अब मसला है। अब मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, ड्राइवरों के मसाइल। अब एक आदमी को टूर नहीं मिलता तो वो तो अपनी गाड़ी छोड़ के वो कहेगा कि मैं तो ये जाके जो 30,000 वाली है जब फिक्स हो जाता हूँ तो मुझे तो 30,000-32,000 यहाँ से मिलेगा, तो चलो मैं अपनी फैमिली को तो सपोर्ट कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है आपको एक चीज जहन शीन करनी है कि अगर हमने इस मुल्क के अंदर रहना है तो हमें इस मुल्क की जो कानूनी होल्स हैं जो यहाँ के, उसको हमें सीखना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दूं, वकीलों की बात हो रही है, वकील सारे हर कानून को नहीं समझते, आपको वो जो है वो इनके जो पार्लियामेंट के जो फॉर्गेटिंग के लॉज हैं उसको पढ़ते हैं, वो आइन को नहीं पढ़ते। और जब तक आप आइन को नहीं पढ़ेंगे आप लॉ के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें ये जो गैदरिंग है ये मस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप जो है टैक्सियों को बचाना पड़ेगा, नहीं तो कल को मैं देख रहा हूँ कि ये गर्मियों की छुट्टी के बाद क्या होगा, जब ये 600 नई टैक्सी सड़क पे आ जाएगी, हशर क्या होगा कि वोनमैन अपना 30-35 हजार 40 हजार का खर्चा जो है गाड़ी का वो नहीं दे सकेंगे, और वो कहाँ से कवर करेंगे? बैंक उनको लोन नहीं देगा, दूसरी चीजों पे उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या करेंगे? वो तो बैंकरप्ट होंगे। मैंने खुद कहा अगले दिन कि मैंने 1 लाख करोड़ फियर गन श्योरिटी को दे के, क्योंकि मैं बीमार हो गया था, तो मैंने अपनी सेल्फ केयर को, मेरे वकील ने कहा था बैंकरप्ट हो जाओ 5 साल तक कोई, मैंने कहा मैं नहीं होना चाहता बैंकरप्ट, मैं आज तक नहीं बैंकरप्ट हुआ, मैं अब क्यों? तो मैंने 1 लाख उनको कैश दे के बैंक के थ्रू से, तो मैंने अपने आप को फ्री किया। 62,000 मुझे गाड़ी का घाटा नुकसान हुआ, मैंने वो भी पे किया। बात असल में यह है कि जब लोगों को गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी लोगों की, लोग कहाँ से इनकम लाएंगे? इस मसले के ऊपर बात होनी चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि आज आप 5-5-6-6 लाख की, 1-1 मिलियन की इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आप भाग रहे हैं, खुदा ना खासा कल को आपको
1: शाह
0: कोई
1: साहब, मैं
0: प्रॉब्लम आ
1: छोटी सी
0: जाती है।
1: बात आपकी बात में माजत के साथ बोल रहा हूँ। शाह साहब, कभी खिलाड़ी भी फेल हुआ, खिलाड़ी कभी एक क्लब में बिक जाता है, कभी दूसरी क्लब में बिक जाता है, खेलने वाला खिलाड़ी कभी नुकसान में नहीं जाता।
0: जी वो आपकी बात सही है, पर ये खिलाड़ी नहीं है। हम लोग जो टैक्सी वॉनमैन है या टैक्सी ड्राइवर है, हम लालच की बेस पे काम करते हैं कि हमें टूर मिले, हम काम करें, हमें ज्यादा से पैसा मिले। हमने पाकिस्तान का भी कल्चर रखना है, हमने यहाँ का भी कल्चर रखना है, हमने बच्चों की शादियां करानी है, उनको इतने इतने लाखों के जहेज देने हैं। तो ये सारा लालच जो हमारे अंदर भरा है, इसके ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं, और उस मेहनत से जो है जो कमाई है उसका अब अजाब हमारे पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जिन्होंने वेले लिए हुए हैं, राय का ऊस लिए हुए हैं, सब कुछ देखे, कितने लोग, ये शायद तुमको पता है, कितने लोग मूव हो गए हैं स्वीडन के अंदर, कितने लोग चले गए हैं जर्मनी के अंदर। मैं क्यों अपने बच्चों को यहाँ लेके आऊँ? मुझे नहीं रोका इन्होंने, क्योंकि मैं कानून को जानता हूँ, मैं कानून के लॉज होल्स को जानता हूँ। ये चीजें जो है जब हम इनको कहते हैं कि आओ बैठो बात करो, ये कहते हैं नहीं जी हमारे बच्चे बहुत पढ़ गए हैं। ओ जी मेरे बच्चे भी PhD कर गए हैं, मेरे बच्चे बड़े पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे जब मैं उनसे कोई मदद मांगता हूँ तो वो कहते हैं फा लवे हम इधे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो वो हमें क्या बताएंगे जब उनको खुद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं है कानून एक अलग चीज है और आइन एक अलग चीज है। यहाँ का रिटर्न आइन है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, शायद को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मियां मनीष साहब को भी उतनी प्रोटेक्शन है, मुझे भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उतनी प्रोटेक्शन है, हमारे यहाँ के किंग को भी उतनी प्रोटेक्शन है, कोई फोर्स केस पेंडिंग नहीं। लेकिन जो आईन है, जो लॉ है, जो इन्होंने कानून बनाए हैं, उसमें फोर्स केस पेंडिंग है। ये कैसा आईन रखा हुआ है इन्होंने? यहाँ ये आईन को खत्म कर दे और सारे लॉ फोर्स रहे इंग्लैंड की तरह ले आए कि जो पार्लियामेंट विल चेक करती है हम उसको मानेंगे, तो फिर आयन रखने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को हमने चैलेंज करना है कि क्या आप अपने आयन को मुकदस समझते हैं या आप जो लॉ फोर्स बना रहे हैं इसको मुकदस समझते हैं? इसके लिए बहुत बड़ी डिबेट होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे इन्होंने पोलराइजेशन पे बात की थी, तो मैंने कैसे इनका मसाले दे दे के इनका मुंह बंद किया था, और वो पोलराइजेशन उधर ही खत्म हो गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आपके बात में वजन होना चाहिए। राजा साहब,
2: शाह साहब, मैं एक बात ऐड करता हूँ अगर इजाजत हो आपकी।
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
2: शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन आप भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिसे कहते हैं ना अपने स्टाइल में, ये हमारे सियालकोट के, कि जी असि भी भोले बादशाह। शाह साहब, ये एक सोची समझी स्कीम, मैं इसको साजिश नहीं कहूंगा, साजिश एक सख्त हो जाएगा लफज, मैं हालांकि मैं साजिश ही
0: मैं भी वही कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ
2: मैं साजिश ही कहना चाहता था, लेकिन मैं प्रोग्राम के अंदर हूँ। मैं एक वो कहूंगा कि सोची समझी स्कीम के तहत ये सारा करवाया गया है, आप लोगों को, हमें वोन मनों को खत्म करने के लिए इस मार्केट से बिल्कुल, ये अपने कंट्रोल करने के लिए। डैनिश खुद कंट्रोल नहीं थे कर सकते क्योंकि वो टैक्सी से निकल गए थे, उनके यंग बच्चा कोई टैक्सी में नहीं आ रहा था, वो चलाना नहीं चाहता था, वो आया ही नहीं है। अगर वो आता तो उन्होंने उसके जरिए फिर खुद ही करना था कंट्रोल डैनिश टैक्सी, लेकिन उन्होंने बाहर से फर्मे ला के, ये इतनी नफरत करते हैं आपसे, ये आपको समझ नहीं अब आ रही, आपको सबको समझ आ गई है। हमारी यंग जनरेशन को भी ये समझ आ जानी चाहिए, जो तीसरी चौथी है ये आपसे प्यार नहीं करते, हालांकि आपने इसको कबूल किया है इनको, हम यहाँ पर रहते हैं, हमने यहाँ टैक्स दिया है 60 सालों से, लेकिन इनको ये आनी चाहिए कि टैक्स दे के कारोबार का उतना ही मौके फराहम करने चाहिए जितने आप डैनिश, जो एक थे डैनिश उनको करते हैं, हमें आप डैनिश भी कहते हैं लेकिन हमारे साथ आप ज्यादती करते
1: लेकिन
2: हैं
1: शायद अपने
2: इसी।
1: खिलाड़ी जब किसी क्लबों में बिक जाते हैं तो फिर हालात ऐसे ही होते हैं ना।
2: आपके आपका कहने का मतलब है कि मीर जाफर तो राजा साहब हमेशा हमारे सफों के अंदर पाए गए हैं, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से हम हमेशा से नुकसान उठा रहे हैं हर जगह से, हर महाज पर, खाली सियासी नहीं है, दूसरे ये जो महाज अभी इसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक कारोबार है ना, एक आपका काम का अड्डा है, इधर भी आप मार खा गए हैं। और
0: शायद आपको मैं एक आपकी बात में से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो आपने बात की है ये बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 87 के अंदर हमारे एक वॉनमैन थे, तो उनके बेटे ने इतनी तेजी से मर्सिडीज गाड़ी को जाके, तो कांग्रेस वाय के जो बीच में चौक था ना उसके अंदर जाके गाड़ी मारी, तो उन्होंने उसको पूछा तो वो कहने लगा मैं तो गिमनेजियम में पढ़ता हूँ, तो उन्होंने कहा ये गाड़ी कहता मेरे बाप की है, वो फोरमैन अपना वो वॉनमैन है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो जब उन्होंने बाप को कहा कि भाई तुमने ये मर्सिडीज कैसे रख ली है, तो फिर उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके बाप की इतनी इनकम भी नहीं है, ये शो भी नहीं इतनी टैक्स में कर रहे, तो उन्होंने ये सख्ती वहां से शुरू की। फिर कुछ हमारे अपने लोग भी थे, मैं नाम लेता हूँ, हमारी ये अपना इसी प्रोग्राम के अंदर उसने खुद एक्सेप्ट किया था, यहाँ पे हमारी एक लुबना लाही हमारी काउंसलर होती थी, उसने जाके ये बकायदा ह्यूमन नेमर के अंदर मेरे पास प्रूफ है, उसने कहा कि इनकी वॉनमैनशिप बंद करे, ये सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे, ये सबसे ज्यादा पैसा खा रहे, तो वहां पे
1: तो
0: चार
1: शाह साहब
0: आदमियों ने,
1: इसका अगर प्रूफ है तो बात करें, अगर प्रूफ नहीं है चूंकि वो मौजूद नहीं
0: बिल्कुल
1: है।
0: प्रूफ है, मैंने आपके सामने ने लुबना ने ये कहा था कि ये मैंने ह्यूमन नेमन में ये बात की थी कि इसको खत्म करना चाहिए, तो मैंने उसको कहा था कि तुम अकेली नहीं थी, उस वक्त चार आदमी थे, तो उसने कहा कि प्रूफ, मैंने कहा मेरे पास है, वो टाइमिंग है मेरे पास, तो वो खामोश होगी। तो ये आपके पास रिकॉर्डेड प्रोग्राम है और मैं कभी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसका मेरे पास सबूत ना हो, और ये हकीकत है, और ये चीजें जो जो हुई और इसकी इसकी वजूहत जो थी वो सबके सामने आ रही है।
1: तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं।
3: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Hervan.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज। हफीज होशियारपुरी।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत मुहानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: smack them back.
1: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: In the way to start, this is the manner in the house. Come on, all.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।